0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी

0: करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, start startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour. Earlier, Prime Minister Modi undertook a series of engagements on his visit to the Netherlands yesterday, ranging from community interactions to a meeting with the Dutch royal family. Addressing a community program in The Hague, the Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: The Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election Bill held extensive consultations in Bengaluru with political parties, legal fraternity and civil society yesterday. Briefing media persons, the chairman of the committee, P.P. Chaudhary, informed that the objections and recommendations are being collected by the JPC during their visits to different states. On challenges posed by the proposal, he said that synchronizing elections will need to prematurely dissolve a few state assemblies and resolve issues arising out of anti-defection laws, no confidence motion and president rule. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhojshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Within days of levying high custom duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. In badminton, Indian duo Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Roli Coronando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.
3: Kenyade ka Akashwani Shilo Palolong sa pilayo sa mantanya ka kubo na ka Delhi Station, but hakin ka po na kani ka station yun na pay na sa ka program kijung ray ayngo. Di hashwa pang ina sa kani ka program tungin na pusan halorgis sumbo jing perkap ang mata kasi. Uhabat kasi uong banmani ya ublay kalong bansung tu ya kijung tumu ba ublay ulatao yangi. Banmani ya ublay kalong bansung tho ya ka jing thmu ba ublay ula thaw ngi te palok na sngap ina zang no ya ka program jing rai ai ngo da ka jing rai jong elf ling do ba ka kinhun ka jing rai bal ai ka teng khraw long utrai ban buat pat sada ka jing rai garu balar wai da i brilliant marak

कनेगदेक आकाशवाणी शिलोंग खुबर बनपुले डाउट चमन खरलुखी कीमत बकों सन खुबर मंतकस्ते उ मंत्री रंग बादो करी इंडिया उले कंदो यूसीएम बत गमहादे जों नेदरलैंड्स हगे यंग्स एम हा द हेक कसबी आई हिनन कसिंगी कला कैम मेक अवे के बेरन बंता बक जिंगले तो गिजिंकली बायल जी जों के नीड यू जी आर हजर अरबुन रियो उसंबोद मंत्री रंगबा गजला मेघलाया उबा स्न्याव बलंगधार निन कसि उलप्ले या के यंग तरीकम जोंका के वी के हवा यजेर बरग सिकम गला रखे एक सिंह यो जला का वसन फुवे निन कसि कखु बोर के बबनिया उ मंत्री रंगबा दो के इंडिया नरेंद्र मोदी उले कंदो यूसीएम विलम अलेक्जेंडर बट के महादे मैक्सिमा जोंग नेदरलैंड्स हा के यिंग सीएम कबरन हा द हेक हा कबंता कबार जोंग जिंगले जिंगो अजुंगु या कि संतली गिरी कबपन पाव गि जिंग याय बितेंग मत पिनखला नि जिंगे दे जोंग इंडिया बट के नेदरलैंड्स केरला ये करन रु हलोर गि जिंगे त्रैलंग बनन कियो प्रेंग कि इंडिया बट के नेदरलैंड्स बरो अरलियांग किला कदो वे जिंगे त्रैलंग क बजान नि गि बंता जोंग गि जिंग पने पंसा एक जिंग दन जिंग एम क जिंग त्रै का मलो गि जिंग लोंग क सुन बनेंग कि कोर कि बोर गि जुक बमंता क जिंग लप थमाई क फिनटेक बट कि वे कि वे किलपन पाव या का जिंग अंग नोट जंकी बन पन खांचो शो एक जिंग दे हप दें कि निकी आरी हनन के स्नील आईटी हो नरेंद्र मोदी ये की प्लेट कॉपर की छोला की बपाव नाम जंग स्पास नाम का बखत वे बट की बोर पनियात जंग लेडन यूनिवर्सिटी किला लेट बन आईटी ये की ने हाउ मंत्री रंग बादो करी ये की बलबो बरश कता हा के एशियन लाइब्रेरी जंग ने स्कूल बा कसबीआई हिन्न कसंगी कल कैम मेक अवे कबन बंता पक जिंगले तो कि जिंगले बायल जी जो के नीड यू जी आर हजार अर्पुन रियो कने के बलशा के नो का कृतेंग का मनीषा गुरुनाथ मंधारे बकरे के नोहकाई बॉटनी के बला खम रंगबा न पुणे महाराष्ट्र कसबीआई के पंते पके दन बंता है के एक्समेन नीड यू जी आर हजार अर्पुन रियो नमर लथुंग या का कम कवेन की एक्सपर्ट दा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सीबीआई कलोंग बाकल यो लुट पुराय की कोट जिंकली जों का बॉटनी बा जूलॉजी हादो मंता लकेम खंडाई गोट की नोशा के नो हाकने का काम ना दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे बाद आलिया नगर का यिंग शरी जो नाव बा दिल्ली नेन कसिंगी कला फा याव बशा के नो बा खमा खमात हाकने को मोको दुमा बेदे बग जिंगला तो ग जिंकली नीड यूजी उपीवी कुलकर्णी बाद का मनीषा वक मारे हा का अलोंग का सीबीआई ना के बंता शफोसंगी बन पन लोंग या के जिंग तोकेट उसंबोद मंत्री रंगबा का जला मेघालया उबा स्न्याव बलंगधार नेन कसंगी उलप्ले के यिंग त्रेकम जोंग का केवीके हवा यजेर बट उले शिम बंता हा का वर्कशॉप जोंग का नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर कुमु कोंगसन यकनिक जिंगलांग का बला पनलोंग दा का कृषि विज्ञान केंद्र वेस्ट जेंटर हिल्स ला पनलोंग हलोर का मत पड़ेंग का जिंग पनला इकिनोंग रेप की बरेट बंदन का जिंग स्टार्ट बट की बोइट हा का जिंग कला का सुन बनेंग हा बकरन के निक सिंगी उबा सन्याव बलांग धार उला पन पाव या का जिंग सिंगोंगो इक जिंग नो सन्यांग की बकराव बा की जिंग शक्री बला आय दा का केवीके शकिनोंग रेप हा बर ओको विक डिस्ट्रिक्ट उला बंजर बग जिंग प्ले या का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लक्ष्मी लंती बकन कन तियो की कम बग जिंग डन कम ना का बंता का भा का म्यात जिंग नोंग रेप हा का रुकम का भा कम है कोम शिबंता बन पंसा प्रियांग या के जिंग पंशाय शिके पदबा हलोर की कंदोन जों का पॉक्सो आक आर हजार खात आर का आन एनडीपीएस का नलसा स्कीम आर हजार खात सन बट का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आर हजार खात सन का ऑफिस जों का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी वेस्ट खासी हिल्स नोंगस्टन कलपनलोंग या का प्रोग्राम पंसंगो थो हागदर बार होल जों का शनोंग से को अमज कबरन हाग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स हाबकरन का निका प्रोग्राम इकोंग इमरथोंग इलोंग बकाथोंग बकोंगसन जोंगने के प्रोग्राम बनसुथो कलोंग बनवरा जसुथो इकि ब्रेओ शफंकी आन फेरबो फेर बट कुमनो बनियो इकि जिंग शक्री हकी कम आन हाकी बबुन की जिंगजा कनिक खुबोर का वंचपी नाग आकाशवाणी शिलोंग नाग आकाशवाणी शिलोंग इने बतेंग बियांग या का खुबोर का सिक्किम का रखे एक सिंह अजला का बसन पुए जों का हनिन के सिंह दा के जिंगलांग का बलालोंग हा का मनन केंद्र हा गैंगटॉक उ वाइस प्रेसिडेंट करी उ सीपी राधा कृष्णन उले शिमबंता कुम कोंगसन हा का बले दन लांग उ मंत्री के सरकार प्रेंग जों का तनात कम्युनिकेशंस बट डोनर उ ज्योति राधित्य एम सिंधिया हा बा आयोजन करन हा कने के जिंगलांग उ वाइस प्रेसिडेंट उल आई कुबले यकी पाजबा का सिक्किम बात कन मा बुराम यो मंत्री रंगबा बनिंगकों के जिला उकाजी लेंदोप दोर्जी हलोर के जिंगी इजिंगाय जिंगु ये के सिंशार खादार के बभा
Ulong bagajingno senyang jangka Sikkim kan longka ba kongsan bha, banpun urlong ya gathong jangka Vikset Bharat kat aga senam arhajar sopuh nyo. Ka jinglom khana samari ke bede ba ka house listing bat housing, kla sedang hnen ka sngi da ka jinglet ki enumerator bat supervisor, sya ki house listing block bopher balabu urinti. Lasaki baha kenong ba shilong bat kiwe ki jaka, ki enumerator bat supervisor kle kendu uru ikinong ilam shnong ban kemi iki jaka lom khana samari. Haga wat beningkong jangka house listing bat housing census, kla sedang naduk hnin ke sengi bat kan beteng haduk ka khat saw terik ujil liu arhajar arpuhun rio. Hapok ke puar ke balai pau sengi kumbala jiet. Ka jingtip syapang ke wei pekwei ke long yeng kan long ke bala pensyong nebu aha ke jingto. Onlum jingkan ye ke jingbit jing biang ha yeng bat ke jingtip bakongsan. Ki jingtip jangki beriw kin long ki basingan bat ke bala burik kat kum ka census act kat kandai sepak sapupra. Ulampang ke yang dorbar tawaan ke jela Meghalaya u Thomas A. Sangma hening ke sengi ulelit yashim bentah ke jing play perda ya ke Meghalaya Open Taekwondo Championship ke Baar bat ke State Level Taekwondo Championship ke Beningkong kata ke Kyorugi bat Pomse Halaban Sports Club Hashilong. Ya ke ni ke jing yakob lekai ke Baar sengi lepen long dek All Meghalaya Taekwondo Association haga bat ke sepangut kinong ilekai na ke jelam Meghalaya, West Bengal, Assam, Sikkim, Nagaland, bat Mizoram, kilawan ban siem benta ha ke ni ke jing yakob. U Nebel John Lengkoy ule yok tep ya ke hat-trick ke Beningkong e ha ke Meghalaya State League ke Basan. Haga jingi kuni ke quarter final, haga baka nangkiu irat sports club kala penrem dah nyogol lakawai ya ke Maram Football Club. Haga jingi kun, haga group B, kebelalong nin kesengi ha SSA Stadium Hashilong. Haga waipat ke jingi kun ke Langsening Football Club kala beteng ban job lenter kendai sien, haga jingi kun, bat nin kesengi kala penrem ya ke Rembai, Shken Shenria Sports Club dah lai gol lanot. Kalang sening kali yok kur hendro poin, kerembai sken senria bat kenang kiu irat kali yok marlai poin. Ka Aqua Adventure Regatta Arhajar Arpun Rio ke Baprasngi, ke bala penolong da ke National Cadet Corps NCC, kalakut nok da ke bajab menin ke sengi ha kepung umyam. Ha ke balawan menisim bentar da ke shis pangut ki kadet ke NCC, na ki jaka pulih baper-baper ha kelengkatan. Ya kene ke Adventure Camp la penolong na duk ke kendai terik, ha duk henin ke sengi. Bala penolong da ke 12 Assam NCC Battalion, hapo ke jingpet jang ke NCC Group Jorhat, bat ke NCC Northeastern Region Directorate. Haga ni ke camp ki cadet senior division bat senior wing, kila yo ek jinghikai ki berjeliau ki kam baper-baper, jang ke Aqua Adventure, bat ki kam nongyalam kentup ek sailing bat kiwe-kiwe. U Menteri Rangba ke Jela Asam Uhimanta Biswa Sarma hnin ke sengi, ula play ya ke Tenat Bank ke Beningkong ea jong ke India ke Bapendan Kam, da ke AI ke Digital Banking, jong ke Slice Small Finance Bank ke Bapendan Haji S. Road ha Guwahati. Haba kerana ke nge sengi, U Sarma ulang baka bank ke Bapendan Trekam da ke Core Digital ke deka waypat ke Senjam ke Bapkongsan, bantai ke Rukom Trekam ke Bapkam Kentup Lang, ya ki nong syong syong haki jakasar, bat ki syong ke Beduna ke Jing Syakri. Ka Central Board of Secondary Education CBSE, kala penolong ya kejing pule ki lai jad ki ketien ni ke 3 language formula, ka bakongsan na kebenta ki kena pule na duk kelas 9, na duk kesyiterik unai tung menta kesenam. Ha kejing penmi kubor da ke CBSE keloong ba artli ni kini gilai teli ki ketien, ki dey bandai ki ketien jong ke India. Kebayahap bat ka NEP Arhajar Arpo, bat ke National Curriculum Framework for School Education NCFSE Arhajar Arpulai. Ka CBSE keloong ba ka numdan ka eksamin banilek da ke bot na kebenta ka ketien ke balai lania ka R3 ha ke kelas 10. Bat kat to ke kubor ke lekut agar neka step ke balawan syafi na ke Akashwani Shillong. Ha ke Por Prabajing ni sok baga Delhi Station na ke bentak kubor ha ke ketian Hindi ke banbuat ke kubor ke ketian Pareng ha ke Por Prakatsan.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को

0: व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में

0: ကနေ့ကတည်းကအကာရှိဝန်နီရှလောင်ကဘဝန်ချပီနိုလိုက်စပါဆောပူညိုပွိုင်းအာမီတာဟိုမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပရင်ကတ်ဘလပရစပန်ရူပစာကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရူဘနီအစငိုကီပရိုဂရမ်ကီဂျုံငီနဂန်နျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ကနေ့ကတည်းကအကာရှိဝန်နီရှလောင်ကနေ့ကလောင်ကဂျင်းပန်မနာကဘဒန်ကမ်ကဒက်ပတီကမရှင်နာကဒစ်ထရစ်အစ်ခါစီဟီလ်စ်ရှီလောင်ကလပန်တိပတ်ဘာဘိုင်ကီခုစနမ်ပဒမအဝတ်ကုမ်ကပဒမဝိဘူရှန်ပဒမဘူရှန်ဘတ်ပဒမရှရီအန်စပန်မနာဟကစငိရခေယာကစငိယောရီပပ်ဘလစ်ကရီဂျန်ကစနမ်အရဂျာအရပူညိုကီနူကီနူကီရီယိုဒန်ဆပ်ကဘလပေါခမတ်ဘတ်ကဘလဒန်နေကဂျင်ဂျပ်ဟကအတ်လစ်တရေချာဘတ်ကပူလီပူသီကစပော့မက်ဒီဆင်ဆိုရှယ်ဝါခ်ဆိုင်ယန့်စ်ဘတ်အင်ဂျင်နီယာရင်ပပ်ဘလစ်အဖဲယာစ်စီဗီလ်ဆာဗစ်စ်ထရိတ်ဘတ်အင်ဒတ်စထရီဘတ်ကီဝေကီဝေकिला बनाए की करतेंग जो की खनांग मनियो अपाट एक जिंग मंजर नग सरकार बाद की करतेंग देवन फाशक ऑफिस जोंग डेप्टी कमिश्नर ईस्ट खासी हिल्स शिलोंग हाल निश्वा का अर्पोत्रिक जिल्लियो आर हजार अर्पुन रियो ये की जिंग तिप बखाम बनिया ला बनियो नाग वेबसाइट जोंग डिस्ट्रिक eastkhasihills.gov.in कतु के जिंग पर मना कला वन चपी नाग आकाशवाणी शिलोंग कनेगडे का आकाशवाणी शिलोंग परलोक नोंग स्नाप हाका जिंगराके जोंग का आकाशवाणी हाका जिंगया लिंती बन पिनसनो स्पीक प्रोग्राम बफेर बफेर लिंगबाग रेडियो हाका जिंगदाप खंडाई पोस्नेम जोंग जिंगवनरा या की प्रोग्राम बफेर बफेर नग रेडियो हागरी इंडिया इनवालम शपी नि जिंगतेप इब्लंकोट हाका बेदे बात का मोटो जोंग का आकाशवाणी बकता गदे बहुजान हिताय बहुजान सुखाय balashim nagaktien sanskrit ban kebemut nagabenta ka jingkemen jingki babun nagabenta ka bha kamiat jingki babun la yo men siem nagawei nik jingrawai jingka rik veda ba ka ne ka dairu ka nongrem jong ka kam ka batrei da ka all india radio la ne ka akashvani kum kata ka broadcaster ka bon ra ka jingtep ka ba ai ka jingnang jingtep ba ra ka jo ka poru ka ba wanlam ki program ki ba pen bernya ya ki brio jong ka ne ka jat bin rio ka bakrau te halor ka ne ka phang ba ka akashvani ka tre ni wara ki program ba per ba per bangin ai jingtep bangin penang pen start ba ra ka jo ka poru bangin pen bernya ba ka ne ru ka dei ka wei ni ki phang ki bangin tre kam ba ka ta ka long na ka benta ka jingkmen jingki ba buon na ka benta ka bha ka miat jong ki ba buon kani gede ka akashvani shillong te parlok nong sngap menta ke sngi ke dei ka jingrake ya ke world hypertension dia arhajar arpun rio te hakabe dei bagne in warlam chapi ya ke jingkren halor kani ke phang ban kren di dr Ines ke warshong
1: khble phi baro nga i dr Ines ke warshong i physiotherapist te menta ke sngi ni kren chi phang kani ke world hypertension day kaba ngi tip kum ka jing kiew ka blood pressure te la khadru yaka kum ka silent killer namar ka trei kam jar jar khlem ki jing maham ni ki dak ki shin bashir khai henre ka pin julor ya uklong snam ki khlai ka jabieng shwa ba pin sngu thu ba don a a ka jing thut ha ka met jong pi ka phang pdeng jong ka world hypertension day ka ba ar hajar ar phun rio ka kran shi phang ka jing ya trei lang ba बनते लकाम या का हाइपरटेंशन कने का फंग का पिन पाव बा डन कम या का जिंग ट्रे लंग बारो जंग की ब्रियो शिमेट की लोंगिंग की शनोंग की थाव की नोंग सुमार बट की रुकम ट्रे कम जंग का कोइट का खिया बन ट्रे लंग डक अवे का जिंग मुड की नोंग रिम बा कोंग सन जंग कने का कैंपेन का लोंग बांगिन थो बार बोर या का ब्लड प्रेशर जंग ला जंग इन या दा कट बा दंगला बट बन याई ने बार बोर हा की जिंग सुमार खनंग बा किन लोंग की एक एक की बभा नाम ता का मेट का फाट ग जंगी हबंगी पे हा करी इंडिया ला अंतत ला पलात आर फु आर क्रोर मुत की पाज बा की बशाकता हा कनी के जिंग स्टम बट बुन नकी किम पतिब बा डन कनी के जिंग पंग नमार कता का जिंग यत्रे लंग पाज बा का दे का बा डन कम बट का बा कोंग सन भा ती के ए कनी का हाइपरटेंशन

0: हेलो, गुड मॉर्निंग. रिक्वेस्ट लाइन.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: फिकटेंग कुम नो का
1: ना इधो ना शनि मौक डॉग.
0: डो ना मोकडॉक.
1: हाँ
0: ओके, फिकवा बन स्नाप जिंगरू आयो.
1: आई गोटे ब्यूटीफुल संडे.
0: ओके, विल डेफिनेटली प्ले दिस सॉन्ग. फिकवा बन पिन स्नाप यानो कनिक जिंगरू आय को.
1: Kong e yak piang tu ba sim ka ko jonga. Ba
0: Thank
1: ya
0: you.
1: baro i ti bala snap ya kan ka program mo si bala yo lain cak man.
0: Okay. Thank you.
1: Pang kum tai.
0: Tapi so tenan ban snap ke program ayo nak kene ke station ka jongi.
1: Kum kan ya iPhone in.
0: Nang ta.
1: Text your request.
0: Oh, ta ta.
1: Online.
0: Oh, okay.
1: Like.
0: कमुत फिर ए रेगुलर लिसनर मौकों फिश जूसनप कने की प्रोग्राम जोंगी न स्टेशन जोंगी.
1: यस
0: थैंक यू सो मच कॉम फॉर कॉलिंग मा इन पिन टेम कने का जिंग राय फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. हैव अ ब्लेस्ड संडे.
1: सेम टू यू.
0: थैंक यू.
1: बाय
0: बाय. यस लिसनर्स, वी हैव दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम मोकडॉक एंड शी इज रिक्वेस्टेड to play the song Beautiful Sunday. So let us listen to this song Beautiful Sunday by Christy Lane.

खूब लही फी बारो की परलोक नौ साहब कने गने का आकाशवाणी शिलोंग का बॉन्च पे ऑलाइस पास साउ पन्यो पन्य आर मिटेस मिरी मेफ उबायन कट बट प्रास पार रिप साउ किलो हर्ट्स बट फिलार उबन्यो स्मो ही है आका न्यूज ऑन एयर ऐप कस्टप का बकमन ये फी बारो की परलोक नौ साहब बढ़ा कने का पर निदन या का प्रोग्राम ना थोए का डोनोट बढ़ा कने का पर निदन या की जिंग रॉय ने फर्स्ट लीप बॉन एल्ट्रॉन बट ना ई इमेडिका लिटन बन सांग एक नेगा प्रोग्राम इन टाइम शो आई जिंग रॉय ने ई फर्स्टली बॉर्न एल्ट्रॉन की जुमाई ब्लाइक तंग न्यू जिंगर खू तो इन स्नेह बट तो याई ने हांगा

आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करे। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डाले। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी का ये शिलोंग केंद्र 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज पर श्रोता स्टूडियो के घड़ी के अनुसार दोपहर के 12 बज रहे हैं। समय हुए हमारे आज के दोपहर हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए। उन्हीं के लिए हमने चुने हैं छंद गीत। तो आइए सुनते हैं यह गीत फिल्म आशाएं से।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन

श्रोता, अभी आपने जो गीत सुना वह था सोनू निगम की आवाज में और फिल्म का नाम था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस समय आप आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत फौजी भाइयों के लिए। तो आइए सुनाते हैं आपको हमारे आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जीना तेरे गली में। इस गीत के युगल स्वर में है उदित नारायण एवं अनुराधा बोडवा।

खूब लई फे बारो की परलोक नोंग सब कने गरे का आकाशवाणी शिलोंग गबोन छ फेउ लाइस पा साउ खुयो पोइन आन मिते सिमिरे मई फु बैन गत बट प्रास पारु साउ किलोहर्ट्ज बट फिला रो बने सुनो नि हा का न्यूज ऑन एयर ऐप हागने का पर नि डन या का प्रोग्राम सूर्य रो बर हागने का प्रोग्राम नि डन या गिचिंग रो एन ई लप स्पून मर बन्यांग बन ना ई क्राउ पर सो टुन पत बन जांग ने प्रोग्राम नि डन या गिचिंग रो एन ई या लप स्पून मर बन्यांग गिचिंग रो लाइक टेंकला चिंगिस ने कपड़े बात नहीं हो या मैं

0: at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।

0: विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी का ये शिलांग केंद्र 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय स्टूडियो के घड़ी के अनुसार दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। समय है दोपहर के हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपके गीत का। कार्यक्रम आपके फरमाइश गीतों पर आधारित है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2952047। तो श्रोताओं, आप DTH के माध्यम, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम या मोबाइल फोन के माध्यम से भी जरूर फोन कर सकते हैं, अपना मनपसंद गीत सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आइए और समय ना लेते हुए सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन है हमारे साथ?
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। मैं
0: अच्छा प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ। शैली जी आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप तो मेरी आवाज ही पहचान ली।
1: जी बिल्कुल, मैंने तो आपको सबसे बड़ा फैन मान रखा है मेरा।
0: जी, बहुत
1: कई
0: बहुत
1: बार मेरा
0: धन्यवाद।
1: फोन लगता है ना।
0: जी, प्रेम जी क्या बोले आपने?
1: आकाशवाणी पे, किसी भी आकाशवाणी पे मेरा कॉल लगता है ना।
0: जी,
1: तो मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुझे बहुत ही फेमस कर दिया है एकदम।
1: जैसे हमारे दोस्तों की लिस्ट होती है ना,
0: जी
1: मतलब उसमें मैंने आपका नाम ऐड कर रखा है। कहीं से भी अगर कॉल लगेगा ना मेरा, तो अनाउंसर पूछते हैं कि आपके फ्रेंड का नाम लीजिए, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ आकाश, क्योंकि शैली जी हमारे फ्रेंड है।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम, और गाने के बोले ये चांद कोई दीवाना है।
0: अच्छा, छुपा रुस्तम।
1: जी
0: तो शायद हमारे साथ लाइन में कोई और भी थे।
1: जी
0: जी, तो आप दोस्तों के नाम लीजिए।
1: जी आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी हमारे दोस्त हैं। आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी और भगवान सिंह परमा, लोकेन्द्र वर्मा, तुकाराम यादव, केसे सिंह राजपूत और सारू नूर अंसारी, आशुतोष अविनाश संगीता जी, ये सभी दोस्त हैं हमारे।
0: अच्छा
1: जी
0: प्रेम जी, एक एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी। छुपा रुस्तम तो हमारे पास है नहीं, शायद लाइन कट गया था बीच में। आप कोई
1: जी
0: और
1: तो मैं
0: गीत बोल
1: आपको
0: सकते
1: बता
0: हैं?
1: रहा हूँ, जिसने आपको बताया था चला दीजिए आप।
0: आशिकी मूवी का गोरी तेरा नखरा
1: हाँ जी
0: है ना?
1: यही चला दीजिए आप तो
0: ठीक
1: बिल्कुल।
0: है ठीक है। तो फिर प्रेम जी आइए सुनते हैं, शायद आप कहीं बाहर हैं, कहीं सफर कर रहे हैं क्या आप?
1: नहीं घर पे हूँ, लेकिन काफी तेज हवाएं चल रही हैं
0: अच्छा
1: आपकी।
0: अच्छा अच्छा तभी ठीक है। तो फिर आइए आनंद लेते हैं यह गीत, गोरी तेरा नखरा। ठीक है
1: जी जी
0: जी,
1: थैंक यू, आप
0: धन्यवाद
1: रखिए।
0: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार राधे राधे।
0: नमस्कार। आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
1: जी मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी संगीता जी, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप फोन नहीं की, शायद बहुत से लोगों ने आपको।
1: इसलिए सुन रही थी प्रोग्राम, लेकिन डायल करने का समय नहीं मिला।
0: अच्छा
1: सुना बोले।
0: जी जी जी तो आप इतने बिजी थे।
1: जी डायल करने के लिए तो बस निकलना पड़ता है।
0: जी जी बिल्कुल
1: पड़ता है।
0: अच्छा
1: इसलिए काम करती हूँ, गाना सुनती हूँ, प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: अच्छा संगीता जी, बहुत अच्छी बात है। तो संगीता जी, आप मुझे पहले ये बताइए, आप हमें किसके द्वारा फोन कर रहे हैं, डीटीएच या मोबाइल?
1: मोबाइल ऐप से सुनती हूँ प्रोग्राम।
0: अच्छा, तो फिर बता दीजिए आज किसकी गाना आप सुनेंगी।
1: आज आशा जी की आवाज में गाना सुनना चाहती हूँ, आपकी पसंद की
0: हाय।
1: तो
0: अच्छा, तो मेरी जो पसंद है मैं नहीं कर पा रही हूँ, कौन सा सुनूं, झुमका गिरा रे या चुरा लिया है तुमने?
1: हाँ झुमका गिरा रे दे दीजिए।
0: तो फिर जी ठीक है संगीता जी, तो यही गाना हम सुनेंगे। तो आप दोस्तों के नाम ले लीजिए।
1: हाँ दोस्तों, सबसे पहले मित्र तो आप हो,
0: धन्यवाद।
1: और राकेश जी है, पूरन वर्मा जी है, अविनाश भैया है, भगवान जी है, केसी सिंह जी है, राम बाबू शर्मा जी है, सबको लेके सुना है।
0: जी तो फिर आइए आनंद लेते हैं झुमका गिरारे। ठीक है
1: जी,
0: जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश यह गीत पूरा नहीं बजा पा रहे हैं, तो आइए फिर से हम सुनते हैं यह गीत झुमका गिरा रे, इसी को कंटिन्यू करते हैं।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो लतीफ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
1: हाँ मैं कश्मीर से हूँ, हमारे बहुत
0: जी आप कैसे हैं?
1: अच्छा मैडम, आप ठीक है? आप
0: जी लतीफ जी, शायद आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है, आप हमें सुन सकते
1: आवाज
0: हैं?
1: पूरा क्लियर? हाँ
0: आप सुन पा रहे हैं हमें?
1: हाँ हाँ मैं सुनता हूँ आपकी आवाज।
0: अच्छा, ठीक है। तो फिर लतीफ जी बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: मुकेश की आवाज में
0: अच्छा, तो मुकेश जी की आवाज़ में मैंने जो चुना है वो दिल की नज़र से, मूवी अनारी से, मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में चलेगा?
1: यही।
0: जी तो फिर आप दोस्तों के नाम लेंगे लतीफ जी?
1: बस मेरे साथ तो सभी सुनेगा आपको।
0: जी तो फिर ठीक है लतीफ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सुनते हैं हम यह गीत अनारी मूवी से, ठीक है?

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन है हमारे साथ लाइन में?
1: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस्तेन बंडा वेली के लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे दीदी। कैसी हैं आप?
0: अच्छा लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, चाय पी लो दीदी।
0: काश हम वहां होते लक्ष्मण जी। तो कैसी चल रही है चाय की दुकान?
1: अच्छी चल रही दीदी, और आप आ जाएगी तो और ज्यादा चलेगी। पकौड़ी समोसा रसगुल्ला सब खिलवाए।
0: अरे वाह लक्ष्मण जी, अच्छा कहाँ है आपकी दुकान वैसे?
1: ये बस स्टैंड पे है, सागर जिला बंडा तहसील।
0: सागर कौन सा जिला?
1: सागर जिला, सागर जिला बंडा तहसील।
0: अच्छा तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश? नहीं,
1: हाँ मध्य प्रदेश।
0: मध्य प्रदेश। जी जी जी जी
1: हाँ
0: जी जी तो लक्ष्मण जी बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: राजा हिंदुस्तानी का कोई भी सुनवा देना। हमारे दोस्त हैं गजरा लोधी, मांगी लाल चंद, बसंती लाल सुख, बसंत कटारे, ऋषि के तिवारी है, भगवान सिंह है और अमित तिवारी है, ये सब दोस्त हैं, सुनना चाहिए।
0: अच्छा तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजा हिंदुस्तानी तो हमारे पास नहीं है।
1: कोई भी सुनवा दो आपकी पसंद का, कोई भी सुनो।
0: ये बड़ी मुश्किल है। तो ठीक है, अभी फिलहाल मेरे हाथ में ये वाला गाना है, चांद मेरे दिल, इतना तो याद है मुझे, चलेगा?
1: यही सुनवा दो, कितना तो याद हो मुझे।
0: जी तो फिर लक्ष्मण जी आइए सुनते हैं, और आप हमारे आखिरी कॉलर हैं आज के
1: हाँ
0: दिन।
1: दीदी, हाँ दीदी,
0: तो आप वैसे आप किसके माध्यम से सुन रहे हैं हमें?
1: हम मोबाइल ऐप पर सुन रहे दीदी।
0: अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत से लोग
1: हाँ
0: आए, चाय पिए, आनंद लें, ठीक है? वैसे भी
1: हाँ
0: आज रविवार है ना, तो छुट्टी के
1: हाँ
0: दिन है। जी तो फिर लक्ष्मण जी आइए सुनते हैं यह गीत, इतना तो याद है मुझे, ठीक है?
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी।

श्रोतो, अभी आपने जो गीत सुना उस गीत को हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से, और इस गीत के युगल स्वर में थे मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारे इस समय का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शाम 5:15 में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म की शीर्षक गीत। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये शिलांग केंद्र है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य

कृषि की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी का ये शिलांग केंद्र 347.2 मीटर 3.664 किलोहर्ट्ज पर श्रोता समाज स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5:15 हुए हैं। समय है हमारे आज शाम के हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम शीर्षक गीत का, और आज का जो हमारा शीर्षक है वह है शब्द। कुछ कुछ से बहुत कुछ बन सकता है श्रोताओं, तो आइए आनंद लेते हैं बहुत सारे गानों का। और शुरुआत है हमारे आज की जो फिल्म है वह है दूरी, कुछ इस तरह।

श्रोताओं, ये अगला गीत सुनते हैं सिंघम रिटर्न से, और इस गीत के युगल स्वर में है अंकित तिवारी और तुलसी कुमार।

श्रोताओं, कल हो ना हो फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारे इस समय का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल दोपहर 12 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर आएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म गीत। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये शिलांग केंद्र है।

0: kamata ka jingim ka bhaba na gi nutrition ki bapura bar ban yo ka jingmun toy khamtame ha ka kot ka khya lapni da ka commissionerate of food safety megalia shillong
1: di ha ye dekh kaise
2: happy birthday bhai
1: dikha
3: ha mera favorite color
4: hamesha shopping
5: I know ma but kharcha karne ki bhi yahi umar hai right
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है
7: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
5: आई नो ना
7: आरबीआई कहता है
8: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
9: फिल्म योस मोमेंटम यागतो गजिनवाई जोंग इनांस खेमबोर मौलों हाका प्रोग्राम की साउ समय मेंतापान Nimpa sngap shupi ya ka jingwai jong I amal swarjri ka ba ila aikar teng jisu jisu melong badap.

0: ensuring the nutrition, health, well-being continuum of the child and the mother coming together. We just come from a very fruitful discussion with the chief minister, and we thought of having the vision for Meghalaya, in which there is a 003. I was very pleased to see the creation of the Young People Action Group. It's a platform that young people have committed to take forward to inform policies. And then on the other side of the table, you have the government that has agreed that this group will also inform key policy priorities. That's a meaningful participation in action, and it's been a pleasure for UNICEF to walk this journey together.
1: And that's all, listeners, we have for you in this edition of the Regional Radio Newsreel, which came to you from the studios of Akashwani, Shillong.
2: This is Akashwani Shillong. We now bring to you Virali Akashwani Delhi for the news in Hindi, to be followed by the news in English.
3: Namaskar. Akashwani se samachar sandhya ke saath main Sir Firozi. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की. कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत. मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया. बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता. और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं. स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे. दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया. विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया. एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया. गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे. इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन.
3: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
5: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है. रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी. उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा. यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है. यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए. इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग. शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स.
3: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
6: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
7: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
8: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
7: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी